ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 10 जून बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। अमेरिका के एक सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ताजा हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं ईरान का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई की थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मंगलवार को अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि लड़ाकू विमानों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी वायु रक्षा प्रणाली नियंत्रण केंद्रों और निगरानी रडार स्थलों पर हमला किया। कमान का कहना है कि ये कार्रवाई अमरीकी सेना और व्यावसायिक जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों के जवाब में की गई थी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि ईरानी नौसेना ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े पर स्थानीय समय अनुसार सुबह 2:30 बजे ड्रोन हमला किया। बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि यह दुश्मन की कार्रवाई का जवाब था। अमरीकी केंद्रीय कमान के एक प्रवक्ता ने एनएचके को बताया कि ईरान का दावा झूठा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पहले कहा था कि ईरान ने जल डमरू मध्य में गश्त कर रहे एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित और सही सलामत हैं और अमरीका को आवश्यकता के चलते जवाब देना पड़ा। तनाव में उछाल ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन और तेहरान शांति समझौते को अंतिम रूप देने के निर्णायक चरण में हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को उत्तर कोरिया का अपना 2 दिवसीय दौरा समाप्त किया। यह स्पष्ट नहीं है कि शी और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच उत्तर कोरिया के परमाणु विकास कार्यक्रम पर चर्चा हुई या नहीं। कुछ विशेषज्ञ इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि चीन उत्तर कोरिया की गतिविधियों को शायद नजरअंदाज कर रहा है। किम के साथ हुई बातचीत के दौरान सोमवार को चीनी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ राजनयिक और सैन्य आदान प्रदान को मजबूत करने समेत आर्थिक, व्यापारिक और जन संबंधी आदान प्रदान बढ़ाने की अपनी मंशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच पारंपरिक मैत्री को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि शी और किम उत्तर कोरिया के परमाणु विकास कार्यक्रम के बारे में क्या चर्चा करेंगे। 2019 में उत्तर कोरिया में हुई शिखर वार्ता में शी जिनपिंग ने कहा था कि चीनी पक्ष कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण और क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता बनाने में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लेकिन हालिया शिखर वार्ता के बाद से न तो दोनों देशों की घोषणाओं में और न ही मीडिया रिपोर्टों में अब तक उत्तर कोरिया के परमाणु विकास कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि चीन उत्तर कोरिया की गतिविधियों के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से सहिष्णुता का रुख अपना रहा है। 11 जुलाई को दोनों देशों द्वारा मैत्री, सहयोग और पारस्परिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए जाने की 65वीं वर्षगांठ है। इस समझौते में कहा गया कि यदि किसी भी पक्ष पर सशस्त्र हमला होता है

दूसरा पक्ष सैन्य सहायता प्रदान करेगा। शी और किम संधि की वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमत हुए। पर्यवेक्षक इस बात पर नजर रख रहे हैं कि चीन सरकार उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और कोरियाई प्रायद्वीप से जुड़े अन्य मुद्दों से कैसे निपटेगी।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सोमवार की सुबह फिलीपींस में आए भीषण भूकंप में कम 37 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों घायल हुए हैं और हजारों लोग कहीं आश्रय लेने को मजबूर हैं। बचाव कर्मी सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र दक्षिणी मिंदानाओ में 4 लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने जनरल सांतोस शहर में एक सुपरमार्केट के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका में 2 लोगों की तलाश की। भूकंप ने मिंदानाओ द्वीप पर कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि 2500 से अधिक मकानों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है और 30,000 से अधिक लोगों को कहीं आश्रय लेना पड़ रहा है। जनरल सांतोस में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियमित यात्री उड़ानें रोक दी गई हैं। सड़कें, बिजली आपूर्ति और संचार नेटवर्क भी प्रभावित हुए हैं। फिलीपीन रेडक्रॉस का कहना है कि उसने क्षेत्र में एक सहायता दल भेजा है। इस क्षेत्र में और अधिक भूकंप आने की आशंका जताई जा रही है। देश के भूकंप विज्ञान अनुसंधान संस्थान का कहना है कि सोमवार से अब तक 1,000 से अधिक झटके आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। मई महीने में जापानी कंपनियों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। पेट्रोलियम से संबंधित उत्पादों की ऊंची कीमतों के कारण ये वृद्धि दर 3 वर्षों में सबसे अधिक थी। बैंक ऑफ जापान का कहना है कि प्रारंभिक उत्पादक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष की तुलना में पिछले महीने 6.3% बढ़ा है। मार्च 2023 के बाद ये सबसे बड़ी वृद्धि है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहने से गैसोलीन जैसे पेट्रोलियम और कोयला उत्पादों की कीमतों में 13.8% की वृद्धि हुई। नेफ्था की कीमत में वृद्धि के कारण पॉलीएथिलीन जैसे रासायनिक और संबंधित उत्पादों की कीमतों में 13.4% उछाल आया। अलौह धातुओं की कीमतों में 42.2% की वृद्धि हुई, जिसका आंशिक कारण ये था कि पश्चिम एशिया में एल्यूमिनियम उत्पादन केंद्रों को संघर्ष में नुकसान पहुंचा है। अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने उन कंपनियों की सूची संशोधित की है जिनका संबंध चीनी सेना से है। इस सूची में चीनी इंटरनेट सर्च सेवा प्रदाता बाइडू और ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अलीबाबा ग्रुप को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय हर वर्ष ऐसी कंपनियों की एक सूची प्रकाशित करता है जिन्हें वो चीनी सैन्य कंपनियां बुलाता है और जो अमरीका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। अमरीकी कानून के तहत पेंटागन को इस सूची में शामिल कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन करने की मनाही है। बाइडू और अलीबाबा ग्रुप के अलावा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD और अन्य कंपनियों के नाम भी सोमवार को जारी सूची में शामिल थे। बाइडू के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी इस सूची में शामिल किए जाने को पूरी तरह से नकारती है और सूची से अपना नाम हटवाने के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगी। अलीबाबा ग्रुप ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि वो कोई चीनी सैन्य कंपनी नहीं है। उसने हर कानूनी कार्रवाई करने का भी संकल्प लिया है। चीन ने हाल के वर्षों में सैन्य नागरिक गठजोड़ नामक राष्ट्रीय रणनीति के तहत सैन्य और नागरिक उद्यमों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी का कहना है कि पेंटागन की नई सूची अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा सकती है। उसके अनुसार दोनों देश आर्थिक और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हैं।
2: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 15वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं।
1: चीन से जापान आई फोटोग्राफर मिया ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंडों की तस्वीरें खींचने नागानो प्रीफेक्चर आई है। वो टैक्सी चालक को बताना चाहती है कि उसे जिगोकुदानी यायन कोएन जाना है। वो जगह सर्दियों में ओनसेन के गर्म पानी में बैठे बंदर देखने के लिए प्रसिद्ध है।
0: तो आज के पाठ में सुनते हैं टैक्सी चालक से मिया की बातचीत।
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले टैक्सी चालक ने पूछा,
2: दोचिरा मदे,
0: कहाँ जाएंगी?
1: मिया ने उत्तर दिया,
3: सारु नो ओनसेन मदे ओनेगाई शिमास,
1: बंदरों वाले ओनसेन जाना है।
0: फिर टैक्सी चालक ने कहा,
2: हाई वाकारिमाश्ता,
0: जी समझ गया।
2: कोचिरा वा हाजिमेते देस्का,
0: यहाँ पहली बार आई है।
1: मिया ने कहा,
3: हाई हाजिमेते देस,
1: जी पहली बार है। बंदरों की तस्वीरें खींचने जा रही हूँ।
0: ये सुनकर टैक्सी चालक ने कहा,
2: सो देस्का,
0: अच्छा,
2: क्यों वा समुई करा, सारु गा तकसान ओनसेन नी हाइट्ते मास यो।
0: आज ठंड है इसलिए बहुत सारे बंदर ओनसेन में बैठे हैं।
1: ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड में नहाने वाले बंदरों का अंग्रेजी नाम है जापानीज मकाक, लेकिन आमतौर पर लोग उन्हें हिम वानर कहते हैं।
0: ये उद्यान दूर पहाड़ पर है। टैक्सी या बस से उतरने के बाद भी यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग आधे घंटे चलना पड़ता है। बर्फ पड़ने के बाद यहाँ तक आना मुश्किल भी हो सकता है, फिर भी बहुत सारे पर्यटक ये उद्यान देखने आते हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: सारु नो ओनसेन मदे ओनेगाई शिमास,
1: यानी बंदरों वाले ओनसेन जाना है। ये वाक्य याद करके आप टैक्सी चालक को बता सकेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं।
0: इस वाक्य में
4: सारु नो ओनसेन
0: का अर्थ है बंदरों वाला ओनसेन, जिसमें से
4: सारु
0: का मतलब है बंदर,
4: ओनसेन
0: का मतलब है गर्म पानी का कुंड, और नो इन दोनों संज्ञाओं को जोड़ने वाला कारक है। पहली संज्ञा दूसरी संज्ञा की विशेषता बता रही है।
4: मादे
1: का अर्थ है तक, और
4: ओनेगाई शिमास
1: का भाव है कृपया। इसका उपयोग अनुरोध करते समय किया जाता है।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस जगह जाना हो उसके नाम के बाद
4: मादे
0: लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
4: ओनेगाई शिमास।
1: तो सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: ओनेगाई शिमास, सारु नो ओनसेन मदे ओनेगाई शिमास, सारु नो ओनसेन मदे ओनेगाई शिमास।
0: अब सुनते हैं टैक्सी चालक और सवारी के बीच एक छोटी सी बातचीत।
5: दोचिरा मदे देस्का?
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले टैक्सी चालक ने पूछा,
5: दोचिरा मादे देस्का,
0: कहाँ जाएंगे?
4: दोचिरा मादे
1: में
4: दोचिरा
1: प्रश्नवाचक शब्द है और इसका अर्थ है कहाँ। ये
4: दोको
1: से अधिक विनम्र है।
0: सवारी ने उत्तर दिया,
6: कुको मादे ओनेगाई शिमास,
0: हवाई अड्डे जाना है।
4: कुको
1: का अर्थ है हवाई अड्डा। इस शब्द में उ और ओ की ध्वनियां लंबी हैं।
0: तो आप भी सुनिए और दोहराइए।

0: 空港。空港までお願いします。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए. मान लीजिए आपको टोक्यो स्काई ट्री जाना है, तो ये बात टैक्सी चालक को कैसे बताएंगे? टोक्यो स्काई ट्री का जापानी उच्चारण है
0: टोक्यो स्काई ट्री, टोक्यो स्काई ट्री.
1: तो कोशिश कीजिए.
2: टोक्यो स्काई ट्री までお願いします。
3: कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में कोई पर्ची या नक्शा हो. मान लीजिए आप नक्शा दिखाते हुए टैक्सी चालक से कहना चाहते हैं कि इस होटल में जाना है. इस होटल के लिए जापानी में हम कहेंगे
0: कोनो होटेरु, कोनो होटेरु.
3: तो कोशिश कीजिए.
4: कोनो होटेरु までお願いします。
1: अब समय है संबंधित शब्द सीखने का. आज हम पाठ की बातचीत में से ही एक वाक्यांश के बारे में विस्तार से बताएंगे. ये वाक्यांश है
0: ओनेगाई शिमस.
3: संज्ञा के बाद
0: ओनेगाई शिमस
3: जोड़कर आप विभिन्न अनुरोध कर सकते हैं. जैसे होटल से चेकआउट करते समय ये कह सकते हैं
0: चेकआउट ओनेगाई शिमस.
3: कॉफी मंगवाने के लिए आप कह सकते हैं
0: कोफी ओनेगाई शिमस.
3: इसमें कॉफी के लिए जापानी शब्द है
0: कॉफी, कॉफी.
1: इसके अलावा रेस्तरां में बिल मंगवाते समय आप कह सकते हैं
0: ओकाइके ओनेगाई शिमस.
1: यहाँ बिल के लिए जापानी शब्द है
0: ओकाइके, ओकाइके.
3: तो सुनिए और दोहराइए.
0: चेक आउट ओनेगाई शिमस, कॉफी ओनेगाई शिमस, お会計お願いします。
1: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं.
5: どちらまで？
2: 猿の温泉までお願いします。
5: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
2: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
5: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
6: 春さんの知恵袋。
3: और अब बारी है अंश हारूजी की सलाह की. आज हम बता रहे हैं जापान की टैक्सी के बारे में.
1: जापान में टैक्सी का किराया दूरी से तय होता है. ये किराया आप मीटर पर देख सकते हैं, इसलिए मोल भाव करने की जरूरत नहीं है.
3: टैक्सी पकड़ने के लिए टैक्सी स्टैंड जाएं. जापान में अधिकतर हवाई अड्डों, स्टेशनों, होटलों और पर्यटन स्थलों के बाहर टैक्सी स्टैंड होते हैं. शहरों में आप सड़क पर हाथ से इशारा करके भी टैक्सी रोक सकते हैं.
1: आपको टैक्सी का पिछला दरवाजा खुद खोलने या बंद करने की जरूरत नहीं है. इसे चालक रिमोट कंट्रोल से खोलते और बंद करते हैं.
3: टैक्सी खाली है या नहीं ये आप सामने की खिड़की पर लगे इलेक्ट्रॉनिक सूचना पटल से जान सकते हैं. खाली टैक्सी में पटल पर कांजी अक्षरों से लिखा होता है
0: खुशा,
3: यानी खाली. ये कांजी अक्षर पहले से याद कर लेंगे तो जापान में काम आएंगे.
1: वैसे आप फोन करके भी टैक्सी बुला सकते हैं, और आजकल तो टैक्सी सेवा के ऐप भी उपलब्ध है. कुछ में अंग्रेजी भाषा की सुविधा भी है. कम आबादी वाली जगह जा रहे हों तो पहले से टैक्सी बुक कर लेना अच्छा रहता है.
3: यूं तो टैक्सी सुविधाजनक होती है, लेकिन बड़े शहरों में अक्सर जाम लग जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा समय लग जाता है. आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यात्रा का समय बढ़ने पर किराया भी बढ़ जाता है.
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा.
3: अगले पाठ में मियाँ बंदरों वाला ओनसेन देखेंगी. तब तक के लिए सायोनारा.

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 10 जून बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानों से सुने समाचार। अमेरिका के एक सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ताजा हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं ईरान का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई की थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मंगलवार को अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि लड़ाकू विमानों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी वायु रक्षा प्रणाली नियंत्रण केंद्रों और निगरानी रडार स्थलों पर हमला किया। कमान का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिकी सेना और व्यावसायिक जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों के जवाब में की गई थी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि ईरानी नौसेना ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर स्थानीय समय अनुसार सुबह 2:30 बजे ड्रोन हमला किया। बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि यह दुश्मन की कार्रवाई का जवाब था। अमेरिकी केंद्रीय कमान के एक प्रवक्ता ने NHK को बताया कि ईरान का दावा झूठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पहले कहा था कि ईरान ने जल डमरू मध्य में गश्त कर रहे एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित और सही सलामत हैं और अमेरिका को आवश्यकता के चलते जवाब देना पड़ा। तनाव में उछाल ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन और तेहरान शांति समझौते को अंतिम रूप देने के निर्णायक चरण में हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को उत्तर कोरिया का अपना 2 दिवसीय दौरा समाप्त किया। यह स्पष्ट नहीं है कि शी और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच उत्तर कोरिया के परमाणु विकास कार्यक्रम पर चर्चा हुई या नहीं। कुछ विशेषज्ञ इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि चीन उत्तर कोरिया की गतिविधियों को शायद नजरअंदाज कर रहा है। किम के साथ हुई बातचीत के दौरान सोमवार को चीनी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ राजनयिक और सैन्य आदान प्रदान को मजबूत करने समेत आर्थिक, व्यापारिक और जन संबंधी आदान प्रदान बढ़ाने की अपनी मंशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच पारंपरिक मैत्री को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि शी और किम उत्तर कोरिया के परमाणु विकास कार्यक्रम के बारे में क्या चर्चा करेंगे। 2019 में उत्तर कोरिया में हुई शिखर वार्ता में शी जिनपिंग ने कहा था कि चीनी पक्ष कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण और क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता बनाने में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लेकिन हालिया शिखर वार्ता के बाद से न तो दोनों देशों की घोषणाओं में और न ही मीडिया रिपोर्टों में अब तक उत्तर कोरिया के परमाणु विकास कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि चीन उत्तर कोरिया की गतिविधियों के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से सहिष्णुता का रुख अपना रहा है। 11 जुलाई को दोनों देशों द्वारा मैत्री, सहयोग और पारस्परिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए जाने की 65वीं वर्षगांठ है। इस समझौते में कहा गया कि यदि किसी भी पक्ष पर सशस्त्र हमला होता है तो दूसरा पक्ष सैन्य सहायता प्रदान करेगा। शी और किम संधि की वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमत हुए। पर्यवेक्षक इस बात पर नजर रख रहे हैं कि चीन सरकार उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और कोरियाई प्रायद्वीप से जुड़े अन्य मुद्दों से कैसे निपटेगी।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सोमवार की सुबह फिलीपींस में आए भीषण भूकंप में कम 37 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों घायल हुए हैं और हजारों लोग कहीं आश्रय लेने को मजबूर हैं। बचाव कर्मी सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र दक्षिणी मिंदानाओ में 4 लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने जनरल सांतोस शहर में एक सुपरमार्केट के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका में 2 लोगों की तलाश की। भूकंप ने मिंदानाओ द्वीप पर कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि 2500 से अधिक मकानों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है और 30,000 से अधिक लोगों को कहीं आश्रय लेना पड़ रहा है। जनरल सांतोस में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियमित यात्री उड़ानें रोक दी गई हैं। सड़कें, बिजली आपूर्ति और संचार नेटवर्क भी प्रभावित हुए हैं। फिलीपीन रेडक्रॉस का कहना है कि उसने क्षेत्र में एक सहायता दल भेजा है। इस क्षेत्र में और अधिक भूकंप आने की आशंका जताई जा रही है। देश के भूकंप विज्ञान अनुसंधान संस्थान का कहना है कि सोमवार से अब तक 1,000 से अधिक झटके आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। मई महीने में जापानी कंपनियों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। पेट्रोलियम से संबंधित उत्पादों की ऊंची कीमतों के कारण ये वृद्धि दर 3 वर्षों में सबसे अधिक थी। बैंक ऑफ जापान का कहना है कि प्रारंभिक उत्पादक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष की तुलना में पिछले महीने 6.3% बढ़ा है। मार्च 2023 के बाद ये सबसे बड़ी वृद्धि है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहने से गैसोलीन जैसे पेट्रोलियम और कोयला उत्पादों की कीमतों में 13.8% की वृद्धि हुई। नेफ्ता की कीमत में वृद्धि के कारण पॉलीएथिलीन जैसे रासायनिक और संबंधित उत्पादों की कीमतों में 13.4% उछाल आया। अलौह धातुओं की कीमतों में 42.2% की वृद्धि हुई, जिसका आंशिक कारण ये था कि पश्चिम एशिया में एल्यूमिनियम उत्पादन केंद्रों को संघर्ष में नुकसान पहुंचा है। अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने उन कंपनियों की सूची संशोधित की है जिनका संबंध चीनी सेना से है। इस सूची में चीनी इंटरनेट सर्च सेवा प्रदाता बाइडू और ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अलीबाबा ग्रुप को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय हर वर्ष ऐसी कंपनियों की एक सूची प्रकाशित करता है जिन्हें वो चीनी सैन्य कंपनियां बुलाता है और जो अमरीका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। अमरीकी कानून के तहत पेंटागन को इस सूची में शामिल कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन करने की मनाही है। बाइडू और अलीबाबा ग्रुप के अलावा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD और अन्य कंपनियों के नाम भी सोमवार को जारी सूची में शामिल थे। बाइडू के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी इस सूची में शामिल किए जाने को पूरी तरह से नकारती है और सूची से अपना नाम हटवाने के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगी। अलीबाबा ग्रुप ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि वो कोई चीनी सैन्य कंपनी नहीं है। उसने हर कानूनी कार्रवाई करने का भी संकल्प लिया है। चीन ने हाल के वर्षों में सैन्य नागरिक गठजोड़ नामक राष्ट्रीय रणनीति के तहत सैन्य और नागरिक उद्यमों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी का कहना है कि पेंटागन की नई सूची अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा सकती है। उसके अनुसार दोनों देश आर्थिक और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हैं।
2: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 15वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं।
1: चीन से जापान आई फोटोग्राफर मिया ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंडों की तस्वीरें खींचने नागानो प्रीफेक्चर आई है। वो टैक्सी चालक को बताना चाहती है कि उसे जिगोकुदानी यायन कोएन जाना है। वो जगह सर्दियों में ओनसेन के गर्म पानी में बैठे बंदर देखने के लिए प्रसिद्ध है।

0: तो आज के पाठ में सुनते हैं टैक्सी चालक से मिया की बातचीत।
1: どちらまで？
2: 猿の温泉までお願いします。
1: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
2: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
1: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
3: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले टैक्सी चालक ने पूछा,
1: दोचिरा मदे,
0: कहाँ जाएंगी?
3: मिया ने उत्तर दिया,
2: सारे नो ओनसेन मदे ओनेगाइ शिमस,
3: बंदरों वाले ओनसेन जाना है।
0: फिर टैक्सी चालक ने कहा,
1: हाय वाकारिमास्ता,
0: जी समझ गया।
1: कोचिरा वा हाजिमेते देस का?
0: यहाँ पहली बार आई हैं?
3: मिया ने कहा,
2: हाय हाजिमेते देस,
3: जी पहली बार है।
2: सारे नो शशिन ओ तोरी नी इकिमास,
3: बंदरों की तस्वीरें खींचने जा रही हूँ।
0: ये सुनकर टैक्सी चालक ने कहा,
1: सो देस का,
0: अच्छा,
1: क्यों वा समुई करा, सारु गा तकसान ओनसेन नी हाइट्ते मासु यो,
0: आज ठंड है इसलिए बहुत सारे बंदर ओनसेन में बैठे हैं।
3: ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड में नहाने वाले बंदरों का अंग्रेजी नाम है जापानीज मकाक, लेकिन आमतौर पर लोग उन्हें हिम बानर कहते हैं।
0: ये उद्यान दूर पहाड़ पर है, टैक्सी या बस से उतरने के बाद भी यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग आधे घंटे चलना पड़ता है। बर्फ पड़ने के बाद यहाँ तक आना मुश्किल भी हो सकता है, फिर भी बहुत सारे पर्यटक ये उद्यान देखने आते हैं।
3: आज का मुख्य वाक्य है,
2: सारे नो ओनसेन मदे ओनेगाइ शिमस,
3: यानी बंदरों वाले ओनसेन जाना है। ये वाक्य याद करके आप टैक्सी चालक को बता सकेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं।
0: इस वाक्य में
4: सर नो ओनसेन
0: का अर्थ है बंदरों वाला ओनसेन, जिसमें से
4: सर
0: का मतलब है बंदर,
4: ओनसेन
0: का मतलब है गर्म पानी का कुंड, और नो इन दोनों संज्ञाओं को जोड़ने वाला कारक है। पहली संज्ञा दूसरी संज्ञा की विशेषता बता रही है।
4: मादे
3: का अर्थ है तक, और
4: ओनेगाइशिमस
3: का भाव है कृपया। इसका उपयोग अनुरोध करते समय किया जाता है।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस जगह जाना हो उसके नाम के बाद
4: मादे
0: लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
4: ओनेगाइशिमस।
3: तो सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: ओनेगाइशिमस猿の温泉までお願いします。猿の温泉までお願いします。
0: अब सुनते हैं टैक्सी चालक और सवारी के बीच एक छोटी सी बातचीत।
5: どちらまでですか？
6: 空港までお願いします。
3: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले टैक्सी चालक ने पूछा,
5: どちらまでですか？
0: कहां जाएंगे?
4: どちらまで
3: में
4: どちら
3: प्रश्नवाचक शब्द है और इसका अर्थ है कहां। ये
4: どこ
3: से अधिक विनम्र है।
0: सवारी ने उत्तर दिया,
6: 空港までお願いします。
0: हवाई अड्डे जाना है।
4: 空港
3: का अर्थ है हवाई अड्डा। इस शब्द में ऊ और ओ की ध्वनियां लंबी हैं।
0: तो आप भी सुनिए और दोहराइए।
4: कूको, कूको मादे ओनेगाई शिमास।
3: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको टोक्यो स्काई ट्री जाना है, तो ये बात टैक्सी चालक को कैसे बताएंगे? टोक्यो स्काई ट्री का जापानी उच्चारण है
4: टोक्यो स्काई ट्री, टोक्यो स्काई ट्री।
3: तो कोशिश कीजिए।
7: टोक्यो स्काई ट्री मादे ओनेगाई शिमास।
0: कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में कोई पर्ची या नक्शा हो, मान लीजिए आप नक्शा दिखाते हुए टैक्सी चालक से कहना चाहते हैं कि इस होटल में जाना है। इस होटल के लिए जापानी में हम कहेंगे
4: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
0: तो कोशिश कीजिए।
5: このホテルまでお願いします。
3: अब समय है संबंधित शब्द सीखने का। आज हम पाठ की बातचीत में से ही एक वाक्यांश के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये वाक्यांश है
4: お願いします。
0: संज्ञा के बाद
4: お願いします
0: जोड़कर आप विभिन्न अनुरोध कर सकते हैं। जैसे होटल से चेकआउट करते समय ये कह सकते हैं
4: चेकआउट お願いします।
0: कॉफी मंगवाने के लिए आप कह सकते हैं
4: कोही お願いします।
0: इसमें कॉफी के लिए जापानी शब्द है
4: कोही, कोही।
3: इसके अलावा रेस्तरां में बिल मंगवाते समय आप कह सकते हैं
4: お会計お願いします।
3: यहाँ बिल के लिए जापानी शब्द है
4: お会計、お会計。
0: तो सुनिए और दोहराइए
4: チェックアウトお願いします。コーヒーお願いします。お会計お願いします。
3: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
1: どちらまで？
2: 猿の温泉までお願いします。
1: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
2: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
1: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
8: 春さんの知恵袋。
0: और अब बारी है अंश हारू जी की सलाह की। आज हम बता रहे हैं जापान की टैक्सी के बारे में।
3: जापान में टैक्सी का किराया दूरी से तय होता है। ये किराया आप मीटर पर देख सकते हैं, इसलिए मोल भाव करने की जरूरत नहीं है।
0: टैक्सी पकड़ने के लिए टैक्सी स्टैंड जाएं। जापान में अधिकतर हवाई अड्डों, स्टेशनों, होटलों और पर्यटन स्थलों के बाहर टैक्सी स्टैंड होते हैं। शहरों में आप सड़क पर हाथ से इशारा करके भी टैक्सी रोक सकते हैं।
3: आपको टैक्सी का पिछला दरवाजा खुद खोलने या बंद करने की जरूरत नहीं है। इसे चालक रिमोट कंट्रोल से खोलते और बंद करते हैं।
0: टैक्सी खाली है या नहीं, ये आप सामने की खिड़की पर लगे इलेक्ट्रॉनिक सूचना पटल से जान सकते हैं। खाली टैक्सी में पटल पर कांजी अक्षरों से लिखा होता है
4: खुशा,
0: यानी खाली। ये कांजी अक्षर पहले से याद कर लेंगे तो जापान में काम आएंगे।
3: वैसे आप फोन करके भी टैक्सी बुला सकते हैं, और आजकल तो टैक्सी सेवा के ऐप भी उपलब्ध हैं। कुछ में अंग्रेजी भाषा की सुविधा भी है। कम आबादी वाली जगह जा रहे हों तो पहले से टैक्सी बुक कर लेना अच्छा रहता है।
0: यूं तो टैक्सी सुविधाजनक होती है, लेकिन बड़े शहरों में अक्सर जाम लग जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा समय लग जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यात्रा का समय बढ़ने पर किराया भी बढ़ जाता है।
3: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में मियां बंदरों वाला ओनसेन देखेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: यह खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। फिलिपाइन में पीर की सुबह आने वाले शदीद जल्जले के सबब कम अज कम 37 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। इसके अलावा हजारहा अफराद पनागार ढूंढने पर मजबूर हो गए हैं। इमदादी कारकुन अब भी उन 4 अफराद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो जनूबी मिंदानाओ में लापता हैं। ये इलाका जल्जले से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। मंगल के रोज इमदादी टीमों ने जनरल सांतोस शहर की एक मुनहदम सुपर मार्केट के मलबे से मस्कूरा 4 में से 2 अफराद की तलाश की भरपूर कोशिश की। उनके बारे में ख्याल है कि वो मलबे तले फंसे हुए हैं। जल्जले से पूरे मिंदानाओ जजीरे में बहुत सी इमारतें मलयामयट हो गई हैं। हुक्काम का कहना है कि 2500 से ज्यादा मकानात को किसी हद तक नुकसान पहुंचा है और 30,000 से ज्यादा लोग पनागाह ढूंढने पर मजबूर हुए हैं। जनरल सांतोस शहर के एक बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से मुसाफरों की मामूल की परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। सड़कें, पावर ग्रिड और मौसलाती नेटवर्क भी मुतासिर हुआ है। फिलिपाइनी रेडक्रॉस का कहना है कि उसने इलाके में एक इमदादी टीम भेजी है। खित्ते में मजीद मुमकिन जल्जलों के लिए तैयारी की जा रही है। मुल्क के सेस्मोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि पीर से अब तक 1,000 से ज्यादा जल्जले आ चुके हैं और मजीद झटके भी लग सकते हैं। मई में जापानी कंपनियों के दरमियान तिजारत की जाने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इजाफे की रफ्तार 3 सालों में सबसे तेज थी, जिसकी बड़ी वजह पेट्रोलियम से मुतल्लिका मसनूआत की पहले से बुलंद कीमतें थीं। बैंक ऑफ जापान का कहना है कि इब्तदाई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स गुज़श्ता माह 1 साल पहले के मुकाबले में 6.3% ज्यादा था। मार्च 2023 के बाद ये सबसे बड़ा इजाफा है। पेट्रोलियम और कोयले की मसनूआत जैसे कि पेट्रोल की कीमत में 13.8% इजाफा हुआ, क्योंकि मशरक वस्ता में जंग के बायस खाम तेल की कीमतें बुलंद रहीं। नेफ्ता की कीमत में इजाफे के सबब पॉलीएथिलीन जैसी केमिकल और मुतल्लिका मसनूआत की कीमतें 13.4% बढ़ गईं। गैर आहनी धातों की कीमतों में 42.2% इजाफा हुआ, जिसकी जुजवी वजह तनाजे के बायस मशरक वस्ता में एल्यूमिनियम के पैदावारी मराकस को पहुंचने वाला नुकसान है। अमरीकी वजारत दिफा ने अपनी उन कंपनियों की फहरिस्त को अपडेट किया है जो बकौल उसके चीनी फौज से मुंसलिक हैं। नए इजाफे में चीनी इंटरनेट सर्च फ्राहम करंदा बाइदू और ई कॉमर्स का बड़ा इदारा अलीबाबा ग्रुप शामिल हैं। वजारत दिफा हर साल अमरीका में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर काम करने वाली ऐसी कंपनियों की फहरिस्त शाया करती है जिन्हें वजारत चीनी फौजी कंपनियां कहती है। अमरीकी कानून के तहत पेंटागोन का इस फहरिस्त में शामिल इदारों के साथ लेन देन ममनू है। बैदू और अलीबाबा ग्रुप के साथ साथ बर्की गाड़ियां बनाने वाली कंपनी BYD और दीगर के नाम भी पीर को जारी होने वाली फहरिस्त में शामिल हैं। बैदू के तर्जुमान ने कहा कि कंपनी मजकूरा फहरिस्त में अपनी शमूलियत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है और वो इस फहरिस्त से हटाए जाने के लिए तमाम दस्तियाब ऑप्शंस इस्तेमाल करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगी। अलीबाबा ग्रुप ने एक बयान जारी करते हुए दावा किया है कि वो चीनी फौजी कंपनी नहीं है। उसने भी तमाम दस्तियाब कानूनी रास्ते इख्तियार करने का अज़्म किया। चीन ने हालिया बरसों में मिलिट्री सिविल फ्यूजन नामी कौमी हिकमत अमली के तहत फौजी और सिविलियन इदारों के दरमियान तआवुन को तकवीत दी है। खबरसा इदारे रॉयटर्स का कहना है कि पेंटागोन की ताज़ा तरीन फहरिस्त अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी को हवा दे सकती है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक मुआशी और सियासी व जुग्राफियाई मुसाबकत में मसरूफ हैं।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद अमरीका ने ईरान के खिलाफ नए हमलों का सिलसिला शुरू किया है। साथ ही ईरान का कहना है कि उसने इन हमलों का जवाब दिया है। और चीन के सदर शी जिनपिंग ने मंगल को शुमाली कोरिया का अपना 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया। ये वाजह नहीं है कि आया शी और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने शुमाली कोरिया की जौहरी पेशरफ्त पर बातचीत की या नहीं। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तजियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: कहा जाता है।
1: ये पार्क पहाड़ों के काफी अंदर वाके है। वहाँ तक जाने के लिए बस या टैक्सी से उतरने के बाद पैदल आधे घंटे की मुसाफत है। बर्फ जमे पहाड़ी रास्तों पर सफर नहायत दुश्वार है, लेकिन कई गैर मुल्की सयाह हिम्मत करके वहाँ जाते हैं। आइए अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: आज के सबक का कलीदी जुमला है, बंदरों के गर्म चश्मे तक चलिए।
3: सारु नो ओनसेन मादे ओनेगाई शिमास।
0: अगर आप इसे याद कर लें तो इसकी मदद से आप किसी टैक्सी ड्राइवर को अपनी मंजिल के बारे में बता सकते हैं।
1: सारु नो ओनसेन के मानी है बंदरों का गर्म चश्मा। इसमें सारु यानी बंदर और ओनसेन यानी गर्म चश्मा के दरमियान दो इस्मों को जोड़ने वाला हर्फ जार नो लगाया गया है। इस तरीके से पहला इस्म दूसरे इस्म की तशरीह करता है। मादे के मानी है तक और ओनेगाई शिमास किसी चीज की दरखास्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आज का नुक्ता, टैक्सी ड्राइवर को कहीं चलने का कहने के लिए मंजिल यानी उस जगह के नाम के बाद मादे और उसके बाद ओनेगाई शिमास लगाएं।
0: और अब वक्त हुआ है मश का, तो सामेइन सुनिए और दोहराइए।
4: ओनेगाई शिमास, सारु नो ओनसेन मादे ओनेगाई शिमास, सारु नो ओनसेन मादे ओनेगाई शिमास।
0: जी सामेईन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
1: अब एक टैक्सी ड्राइवर और मुसाफिर के दरमियान एक मुख्तसर मुकालमा सुनिए।
5: दोचिरा मादे देसु का?
6: कूको मादे ओनेगाई शिमासु।
1: और अब इस मुकालमे की तशरीह।
5: दोचिरा मादे देसु का?
0: कहां जाएंगे?
1: दोचिरा मादे में दोचिरा एक सवालिया लफ्ज है जो दोको यानी कहाँ की शाइस्ता शक्ल है।
0: मुसाफिर जवाब देता है
6: कूको मादे ओनेगाई शिमासु,
0: हवाई अड्डे तक चलिए।
1: कूको के मानी है हवाई अड्डा। कूको में कू और को दोनों हिस्सों का तलफ्फुज लंबा है,
0: तो सामेईन सुनिए और दोहराइए।
4: कूको, कूको मादे ओनेगाई शिमासु।
1: चलिए अब एक और मकाम के नाम के साथ मश करते हैं। आप टोक्यो स्काई ट्री जाने के लिए टैक्सी में बैठते हैं, वहाँ जाने के लिए आप टैक्सी ड्राइवर से क्या कहेंगे? टोक्यो स्काई ट्री का जापानी तलफ्फुज है
4: टोक्यो स्काई ट्री, टोक्यो स्काई ट्री।
1: तो सामेईन कोशिश करें।
7: टोक्यो स्काई ट्री मादे ओनेगाई शिमासु, टोक्यो स्काई ट्री मादे ओनेगाई शिमासु।
0: बाज़ सूरतों में हम मंजिल का नाम लिखा हुआ कागज या नक्शा टैक्सी ड्राइवर को दिखाते हैं।
1: जी बिल्कुल। सामेईन फर्ज करें आप नक्शे पर एक जगह उंगली रखकर टैक्सी ड्राइवर को दिखाते हुए उससे कहना चाहते हैं कि इस होटल तक चलें, तो ये बात कैसे कहेंगे? वैसे इस होटल की जापानी है
4: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
1: तो कोशिश करें।
5: कोनो होटेल मादे ओनेगाई शिमासु, कोनो होटेल मादे ओनेगाई शिमासु।
0: मुझे यकीन है कि अब आप किसी भी टैक्सी ड्राइवर को मतलूबा मकाम तक जाने का कह सकते हैं।
1: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मश्क का। ये आज के मकालमे के इंतहाई कारामत जुमले ओनेगाई शिमासु की मश्क है।
0: दूसरे सबक में आपने सीखा था कि कोई शख्स जो मुतवक्का तौर पर आपका ख्याल रखेगा उससे इब्तदाई गुफ्तगू में यूँ कहा जाता है
4: योरोशिकु ओनेगाई शिमासु।
1: ओनेगाई शिमासु से पहले कोई इस्म लगाकर ये जुमला किसी भी किस्म की दरख्वास्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन होटल से चेकआउट के वक्त कहा जाएगा चेक आउट ओनेगाई शिमासु। रेस्तरां में कॉफी मंगवाने के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। कॉफी की जापानी है
4: कोही, कोही।
1: चुनांचे आप वेटर से यूं कहेंगे कोही ओनेगाई शिमासु। रेस्तरां में खाने पीने के बाद बिल की अदायगी के वक्त भी ये जुमला कारामद है। बिल को जापानी में कहते हैं
4: ओकाइके, ओकाइके।
1: तो बिल की अदायगी के वक्त अमले से कहा जाएगा ओकाइके ओनेगाई शिमासु।
0: तो सामेईन सुनिए और दोहराइए।
4: चेक आउट ओनेगाई शिमासु, कॉफी ओनेगाई शिमासु, お会計お願いします。

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 10 जून बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानो से सुने समाचार। अमेरिका के एक सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ताजा हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं ईरान का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई की थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मंगलवार को अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि लड़ाकू विमानों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी वायु रक्षा प्रणाली नियंत्रण केंद्रों और निगरानी रडार स्थलों पर हमला किया। कमान का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिकी सेना और व्यावसायिक जहाजों पर हाल ही में हुए हमलों के जवाब में की गई थी। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कहना है कि ईरानी नौसेना ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर स्थानीय समय अनुसार सुबह 2:30 बजे ड्रोन हमला किया। बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि यह दुश्मन की कार्रवाई का जवाब था। अमरीकी केंद्रीय कमान के एक प्रवक्ता ने NHK को बताया कि ईरान का दावा झूठा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पहले कहा था कि ईरान ने जल डमरू मध्य में गश्त कर रहे एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित और सही सलामत हैं और अमरीका को आवश्यकता के चलते जवाब देना पड़ा। तनाव में उछाल ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन और तेहरान शांति समझौते को अंतिम रूप देने के निर्णायक चरण में हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को उत्तर कोरिया का अपना 2 दिवसीय दौरा समाप्त किया। यह स्पष्ट नहीं है कि शी और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच उत्तर कोरिया के परमाणु विकास कार्यक्रम पर चर्चा हुई या नहीं। कुछ विशेषज्ञ इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि चीन उत्तर कोरिया की गतिविधियों को शायद नजरअंदाज कर रहा है। किम के साथ हुई बातचीत के दौरान सोमवार को चीनी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ राजनयिक और सैन्य आदान प्रदान को मजबूत करने समेत आर्थिक, व्यापारिक और जन संबंधी आदान प्रदान बढ़ाने की अपनी मंशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने अपने देशों के बीच पारंपरिक मैत्री को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि शी और किम उत्तर कोरिया के परमाणु विकास कार्यक्रम के बारे में क्या चर्चा करेंगे। 2019 में उत्तर कोरिया में हुई शिखर वार्ता में शी जिनपिंग ने कहा था कि चीनी पक्ष कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण और क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता बनाने में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लेकिन हालिया शिखर वार्ता के बाद से न तो दोनों देशों की घोषणाओं में और न ही मीडिया रिपोर्टों में अब तक उत्तर कोरिया के परमाणु विकास कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है कि चीन उत्तर कोरिया की गतिविधियों के प्रति अप्रत्यक्ष रूप से सहिष्णुता का रुख अपना रहा है। 11 जुलाई को दोनों देशों द्वारा मैत्री, सहयोग और पारस्परिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए जाने की 65वीं वर्षगांठ है। इस समझौते में कहा गया कि यदि किसी भी पक्ष पर सशस्त्र हमला होता है तो दूसरा पक्ष सैन्य सहायता प्रदान करेगा। शी और किम संधि की वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमत हुए। पर्यवेक्षक इस बात पर नजर रख रहे हैं कि चीन सरकार उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और कोरियाई प्रायद्वीप से जुड़े अन्य मुद्दों से कैसे निपटेगी।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: सोमवार की सुबह फिलीपींस में आए भीषण भूकंप में कम 37 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों घायल हुए हैं और हजारों लोग कहीं आश्रय लेने को मजबूर हैं। बचाव कर्मी सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र दक्षिणी मिंदानाओ में 4 लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने जनरल सांतोस शहर में एक सुपरमार्केट के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका में 2 लोगों की तलाश की। भूकंप ने मिंदानाओ द्वीप पर कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि 2500 से अधिक मकानों को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है और 30,000 से अधिक लोगों को कहीं आश्रय लेना पड़ रहा है। जनरल सांतोस में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियमित यात्री उड़ानें रोक दी गई हैं। सड़कें, बिजली आपूर्ति और संचार नेटवर्क भी प्रभावित हुए हैं। फिलीपीन रेडक्रॉस का कहना है कि उसने क्षेत्र में एक सहायता दल भेजा है। इस क्षेत्र में और अधिक भूकंप आने की आशंका जताई जा रही है। देश के भूकंप विज्ञान अनुसंधान संस्थान का कहना है कि सोमवार से अब तक 1,000 से अधिक झटके आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। मई महीने में जापानी कंपनियों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई। पेट्रोलियम से संबंधित उत्पादों की ऊंची कीमतों के कारण ये वृद्धि दर 3 वर्षों में सबसे अधिक थी। बैंक ऑफ जापान का कहना है कि प्रारंभिक उत्पादक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष की तुलना में पिछले महीने 6.3% बढ़ा है। मार्च 2023 के बाद ये सबसे बड़ी वृद्धि है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहने से गैसोलीन जैसे पेट्रोलियम और कोयला उत्पादों की कीमतों में 13.8% की वृद्धि हुई। नेफ्था की कीमत में वृद्धि के कारण पॉलीएथिलीन जैसे रासायनिक और संबंधित उत्पादों की कीमतों में 13.4% उछाल आया। अलौह धातुओं की कीमतों में 42.2% की वृद्धि हुई, जिसका आंशिक कारण ये था कि पश्चिम एशिया में एल्यूमिनियम उत्पादन केंद्रों को संघर्ष में नुकसान पहुंचा है। अमरीकी रक्षा मंत्रालय ने उन कंपनियों की सूची संशोधित की है जिनका संबंध चीनी सेना से है। इस सूची में चीनी इंटरनेट सर्च सेवा प्रदाता बाइडू और ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अलीबाबा ग्रुप को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय हर वर्ष ऐसी कंपनियों की एक सूची प्रकाशित करता है जिन्हें वो चीनी सैन्य कंपनियां बुलाता है और जो अमरीका में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। अमरीकी कानून के तहत पेंटागन को इस सूची में शामिल कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन करने की मनाही है। बाइडू और अलीबाबा ग्रुप के अलावा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता BYD और अन्य कंपनियों के नाम भी सोमवार को जारी सूची में शामिल थे। बाइडू के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी इस सूची में शामिल किए जाने को पूरी तरह से नकारती है और सूची से अपना नाम हटवाने के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगी। अलीबाबा ग्रुप ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि वो कोई चीनी सैन्य कंपनी नहीं है। उसने हर कानूनी कार्रवाई करने का भी संकल्प लिया है। चीन ने हाल के वर्षों में सैन्य नागरिक गठजोड़ नामक राष्ट्रीय रणनीति के तहत सैन्य और नागरिक उद्यमों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है। रॉयटर्स समाचार एजेंसी का कहना है कि पेंटागन की नई सूची अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा सकती है। उसके अनुसार दोनों देश आर्थिक और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हैं।
2: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 15वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं।
1: चीन से जापान आई फोटोग्राफर मिया ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंडों की तस्वीरें खींचने नागानो प्रिफेक्चर आई है। वो टैक्सी चालक को बताना चाहती है कि उसे जिगोकुदानी यायन कोएन जाना है। वो जगह सर्दियों में ओनसेन के गर्म पानी में बैठे बंदर देखने के लिए प्रसिद्ध है।
0: तो आज के पाठ में सुनते हैं टैक्सी चालक से मिया की बातचीत।
2: サルの温泉までお願いします。
3: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
2: はい、初めてです。サルの写真を撮りに行きます。
3: そうですか。今日は寒いから、サルがたくさん温泉に入ってますよ。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले टैक्सी चालक ने पूछा,
3: दोचिरा मदे,
0: कहाँ जाएंगी?
1: मिया ने उत्तर दिया,
2: सारु नो ओनसेन मदे ओनेगाई शिमस,
1: बंदरों वाले ओनसेन जाना है।
0: फिर टैक्सी चालक ने कहा,
3: हाय वाकारिमास्ता,
0: जी समझ गया।
3: कोचिरा वा हाजिमेते देसु का?
0: यहाँ पहली बार आई हैं?
1: मिया ने कहा,
2: हाय हाजिमेते देसु,
1: जी पहली बार है।
2: सारु नो शशिन ओ तोरी नी इकिमासु,
1: बंदरों की तस्वीरें खींचने जा रही हूँ।
0: ये सुनकर टैक्सी चालक ने कहा,
3: सो देस का,
0: अच्छा,
3: क्यों वा समुई करा, सारु गा तकसान ओनसेन नी हाइट्ते मासु यो,
0: आज ठंड है इसलिए बहुत सारे बंदर ओनसेन में बैठे हैं।
1: ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड में नहाने वाले बंदरों का अंग्रेजी नाम है जापानीज मकाक, लेकिन आमतौर पर लोग उन्हें हिम बानर कहते हैं।
0: ये उद्यान दूर पहाड़ पर है। टैक्सी या बस से उतरने के बाद भी यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग आधे घंटे चलना पड़ता है। बर्फ पड़ने के बाद यहाँ तक आना मुश्किल भी हो सकता है, फिर भी बहुत सारे पर्यटक ये उद्यान देखने आते हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: सारु नो ओनसेन मदे ओनेगाई शिमासु,
1: यानी बंदरों वाले ओनसेन जाना है। ये वाक्य याद करके आप टैक्सी चालक को बता सकेंगे कि आप

0: वहां जाना चाहते हैं।
1: इस वाक्य में
2: सर नो ओनसेन
1: का अर्थ है बंदरों वाला ओनसेन, जिसमें से
2: सर
1: का मतलब है बंदर,
2: ओनसेन
1: का मतलब है गर्म पानी का कुंड, और नो इन दोनों संज्ञाओं को जोड़ने वाला कारक है। पहली संज्ञा दूसरी संज्ञा की विशेषता बता रही है।
2: मादे
0: का अर्थ है तक, और
2: ओनेगाई शिमस
0: का भाव है कृपया। इसका उपयोग अनुरोध करते समय किया जाता है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस जगह जाना हो उसके नाम के बाद
2: मादे
1: लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
2: ओनेगाई शिमस।
0: तो सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
2: ओनेगाई शिमस। सारु नो ओनसेन मादे ओनेगाई शिमस। सारु नो ओनसेन मादे ओनेगाई शिमस।
1: अब सुनते हैं टैक्सी चालक और सवारी के बीच एक छोटी सी बातचीत।
3: どちらまでですか？
4: 空港までお願いします。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले टैक्सी चालक ने पूछा,
3: どちらまでですか？
1: कहाँ जाएंगे?
2: どちらまで
0: में
2: どちら
0: प्रश्नवाचक शब्द है और इसका अर्थ है कहाँ। ये
2: どこ
0: से अधिक विनम्र है।
1: सवारी ने उत्तर दिया,
4: कूको मादे ओनेगाई शिमासु।
1: हवाई अड्डे जाना है।
2: कूको
0: का अर्थ है हवाई अड्डा। इस शब्द में ऊ और ओ की ध्वनियां लंबी हैं।
1: तो आप भी सुनिए और दोहराइए।
2: कूको कूको मादे ओनेगाई शिमासु।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको टोक्यो स्काई ट्री जाना है, तो ये बात टैक्सी चालक को कैसे बताएंगे? टोक्यो स्काई ट्री का जापानी उच्चारण है
2: टोक्यो स्काई ट्री, टोक्यो स्काई ट्री।
0: तो कोशिश कीजिए।
5: टोक्यो स्काई ट्री मादे ओनेगाई शिमासु।
1: कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में कोई पर्ची या नक्शा हो। मान लीजिए आप नक्शा दिखाते हुए टैक्सी चालक से कहना चाहते हैं कि इस होटल में जाना है। इस होटल के लिए जापानी में हम कहेंगे
2: कोनो होटेरु, कोनो होटेरु।
1: तो कोशिश कीजिए।
3: कोनो होटेरु मादे ओनेगाई शिमासु।
0: अब समय है संबंधित शब्द सीखने का। आज हम पाठ की बातचीत में से ही एक वाक्यांश के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये वाक्यांश है
2: ओनेगाई शिमासु।
1: संज्ञा के बाद
2: ओनेगाई शिमासु
1: जोड़कर आप विभिन्न अनुरोध कर सकते हैं। जैसे होटल से चेकआउट करते समय ये कह सकते हैं
2: चेकआउट ओनेगाई शिमासु।
1: कॉफी मंगवाने के लिए आप कह सकते हैं
2: कोही ओनेगाई शिमासु।
1: इसमें कॉफी के लिए जापानी शब्द है
2: कोही, कोही।
0: इसके अलावा रेस्तरां में बिल मंगवाते समय आप कह सकते हैं
2: ओकाइके ओनेगाई शिमासु।
0: यहाँ बिल के लिए जापानी शब्द है
2: ओकाइके, ओकाइके।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
2: चेकआउट ओनेगाई शिमासु। कोही ओनेगाई शिमासु। お会計お願いします。
0: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
6: どちらまで？
5: 猿の温泉までお願いします。
6: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
5: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
6: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。

0: はるさんの知恵袋。
1: और अब बारी है अंश हरु जी की सलाह की। आज हम बता रहे हैं जापान की टैक्सी के बारे में।
2: जापान में टैक्सी का किराया दूरी से तय होता है। ये किराया आप मीटर पर देख सकते हैं, इसलिए मोल भाव करने की जरूरत नहीं है।
1: टैक्सी पकड़ने के लिए टैक्सी स्टैंड जाएं। जापान में अधिकतर हवाई अड्डों, स्टेशनों, होटलों और पर्यटन स्थलों के बाहर टैक्सी स्टैंड होते हैं। शहरों में आप सड़क पर हाथ से इशारा करके भी टैक्सी रोक सकते हैं।
2: आपको टैक्सी का पिछला दरवाजा खुद खोलने या बंद करने की जरूरत नहीं है। इसे चालक रिमोट कंट्रोल से खोलते और बंद करते हैं।
1: टैक्सी खाली है या नहीं, ये आप सामने की खिड़की पर लगे इलेक्ट्रॉनिक सूचना पटल से जान सकते हैं। खाली टैक्सी में पटल पर कांजी अक्षरों से लिखा होता है
0: खुशा,
1: यानी खाली। ये कांजी अक्षर पहले से याद कर लेंगे तो जापान में काम आएंगे।
2: वैसे आप फोन करके भी टैक्सी बुला सकते हैं, और आजकल तो टैक्सी सेवा के ऐप भी उपलब्ध हैं। कुछ में अंग्रेजी भाषा की सुविधा भी है। कम आबादी वाली जगह जा रहे हों तो पहले से टैक्सी बुक कर लेना अच्छा रहता है।
1: यूं तो टैक्सी सुविधाजनक होती है, लेकिन बड़े शहरों में अक्सर जाम लग जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा समय लग जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यात्रा का समय बढ़ने पर किराया भी बढ़ जाता है।
2: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में मियां बंदरों वाला ओनसेन देखेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: यह खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। फिलिपाइन में पीर की सुबह आने वाले शदीद जलजले के सबब कम अज कम 37 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए हैं। इसके अलावा हजारहा अफराद पनागार ढूंढने पर मजबूर हो गए हैं। इमदादी कारकुन अब भी उन 4 अफराद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो जनूबी मिंदानाओ में लापता हैं। ये इलाका जलजले से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। मंगल के रोज इमदादी टीमों ने जनरल सांतोस शहर की एक मुनहदम सुपर मार्केट के मलबे से मस्कूरा 4 में से 2 अफराद की तलाश की भरपूर कोशिश की। उनके बारे में ख्याल है कि वो मलबे तले फंसे हुए हैं। जलजले से पूरे मिंदानाओ जजीरे में बहुत सी इमारतें मलयामेट हो गई हैं। हुक्काम का कहना है कि 2,500 से ज्यादा मकानात को किसी हद तक नुकसान पहुंचा है और 30,000 से ज्यादा लोग पनागाह ढूंढने पर मजबूर हुए हैं। जनरल सांतोस शहर के एक बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से मुसाफरों की मामूल की परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। सड़कें, पावर ग्रिड और मौसलाती नेटवर्क भी मुतासिर हुआ है। फिलिपाइनी रेडक्रॉस का कहना है कि उसने इलाके में एक इमदादी टीम भेजी है। खित्ते में मजीद मुमकिन जलजलों के लिए तैयारी की जा रही है। मुल्क के सेस्मोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि पीर से अब तक 1,000 से ज्यादा जलजले आ चुके हैं और मजीद झटके भी लग सकते हैं। मई में जापानी कंपनियों के दरमियान तिजारत की जाने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इजाफे की रफ्तार 3 सालों में सबसे तेज थी, जिसकी बड़ी वजह पेट्रोलियम से मुतल्लिका मसनूआत की पहले से बुलंद कीमतें थीं। बैंक ऑफ जापान का कहना है कि इब्तदाई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स गुज़िश्ता माह 1 साल पहले के मुकाबले में 6.3% ज्यादा था। मार्च 2023 के बाद ये सबसे बड़ा इजाफा है। पेट्रोलियम और कोयले की मसनूआत जैसे कि पेट्रोल की कीमत में 13.8% इजाफा हुआ, क्योंकि मशरक वस्ता में जंग के बायस खाम तेल की कीमतें बुलंद रहीं। नेफ्ता की कीमत में इजाफे के सबब पोलीएथलीन जैसी केमिकल और मुतलिका मसनूआत की कीमतें 13.4% बढ़ गईं। गैर आहनी धातों की कीमतों में 42.2% इजाफा हुआ, जिसकी जुजवी वजह तनाजे के बायस मशरक वस्ता में एल्यूमिनियम के पैदावारी मराकस को पहुंचने वाला नुकसान है। अमरीकी वजारत दिफा ने अपनी उन कंपनियों की फहरिस्त को अपडेट किया है जो बकौल उसके चीनी फौज से मुंसलिक हैं। नए इजाफे में चीनी इंटरनेट सर्च फ्राहम करंदा बाइदू और ई कॉमर्स का बड़ा इदारा अलीबाबा ग्रुप शामिल हैं। वजारत दिफा हर साल अमरीका में बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर काम करने वाली ऐसी कंपनियों की फहरिस्त शाया करती है जिन्हें वजारत चीनी फौजी कंपनियां कहती है। अमरीकी कानून के तहत पेंटागोन का इस फहरिस्त में शामिल इदारों के साथ लेन देन ममनू है। बैदू और अलीबाबा ग्रुप के साथ साथ बर्की गाड़ियां बनाने वाली कंपनी BYD और दीगर के नाम भी पीर को जारी होने वाली फहरिस्त में शामिल हैं। बैदू के तर्जुमान ने कहा कि कंपनी मजकूरा फहरिस्त में अपनी शमूलियत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करती है और वो इस फहरिस्त से हटाए जाने के लिए तमाम दस्तियाब ऑप्शंस इस्तेमाल करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगी। अलीबाबा ग्रुप ने एक बयान जारी करते हुए दावा किया है कि वो चीनी फौजी कंपनी नहीं है। उसने भी तमाम दस्तियाब कानूनी रास्ते इख्तियार करने का अज़्म किया। चीन ने हालिया बरसों में मिलिट्री सिविल फ्यूजन नामी कौमी हिकमत अमली के तहत फौजी और सिविलियन इदारों के दरमियान तआवुन को तकवीत दी है। खबरसा इदारे रॉयटर्स का कहना है के पेंटागोन की ताजा तरीन फहरिस्त अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी को हवा दे सकती है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक मुआशी और सियासी व जुग्राफियाई मुसाबकत में मसरूफ हैं।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर को मार गिराए जाने के बाद अमरीका ने ईरान के खिलाफ नए हमलों का सिलसिला शुरू किया है। साथ ही ईरान का कहना है कि उसने इन हमलों का जवाब दिया है। और चीन के सदर शी जिनपिंग ने मंगल को शुमाली कोरिया का अपना 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया। ये वाजह नहीं है कि आया शी और शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने शुमाली कोरिया की जौहरी पेशरफ्त पर बातचीत की या नहीं। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तजियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: तो सामें सुनिए और दोहराइए।
1: お願いします。猿の温泉までお願いします。猿の温泉までお願いします。
0: जी सामें, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
2: अब एक टैक्सी ड्राइवर और मुसाफिर के दरमियान एक मुख्तसर मुकालमा सुनिए।
3: どちらまでですか？
4: 空港までお願いします。
2: और अब इस मुकालमे की तशरीह।
3: どちらまでですか？
0: कहां जाएंगे？
2: どちらまで में दो चिरा एक सवालिया लफ्ज है जो दो को यानी कहां की शाइस्ता शक्ल है।
0: मुसाफिर जवाब देता है
4: कूको मादे ओनेगाई शिमास,
0: हवाई अड्डे तक चलिए।
2: कूको के मानी है हवाई अड्डा। कूको में कू और को दोनों हिस्सों का तलफ्फुज लंबा है।
0: तो सामेइन सुनिए और दोहराइए।
1: कूको, कूको मादे ओनेगाई शिमास।
2: चलिए अब एक और मकाम के नाम के साथ मश्क करते हैं। आप टोक्यो स्काई ट्री जाने के लिए टैक्सी में बैठते हैं, वहाँ जाने के लिए आप टैक्सी ड्राइवर से क्या कहेंगे? टोक्यो स्काई ट्री का जापानी तलफ्फुज है
1: टोक्यो स्काई ट्री, टोक्यो स्काई ट्री।
2: तो सामीन कोशिश करें
5: टोक्यो स्काई ट्री मादे ओनेगाई शिमास, टोक्यो स्काई ट्री मादे ओनेगाई शिमास।
0: बाज़ सूरतों में हम मंजिल का नाम लिखा हुआ कागज या नक्शा टैक्सी ड्राइवर को दिखाते हैं।
2: जी बिल्कुल। सामीन फर्ज करें आप नक्शे पर एक जगह उंगली रखकर टैक्सी ड्राइवर को दिखाते हुए उससे कहना चाहते हैं कि इस होटल तक चलें, तो ये बात कैसे कहेंगे? वैसे इस होटल की जापानी है
1: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
2: तो कोशिश करें
3: कोनो होटेल मादे ओनेगाई शिमास, कोनो होटेल मादे ओनेगाई शिमास।
0: मुझे यकीन है कि अब आप किसी भी टैक्सी ड्राइवर को मतलूबा मकाम तक जाने का कह सकते हैं।
2: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मश्क का। ये आज के मकालमे के इंतहाई कारामत जुमले ओनेगाई शिमास की मश्क है।
0: दूसरे सबक में आपने सीखा था कि कोई शख्स जो मुतवक्का तौर पर आपका ख्याल रखेगा उससे इब्तदाई गुफ्तगू में यूँ कहा जाता है
1: योरोशिकु ओनेगाई शिमास।
2: ओनेगाई शिमास से पहले कोई इस्म लगाकर ये जुमला किसी भी किस्म की दरख्वास्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन होटल से चेकआउट के वक्त कहा जाएगा चेक आउट ओनेगाई शिमास। रेस्तोरान में कॉफी मंगवाने के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। कॉफी की जापानी है
1: कोही, कोही।
2: चुनांचे आप वेटर से यूं कहेंगे कोही ओनेगाई शिमास। रेस्तोरान में खाने पीने के बाद बिल की अदायगी के वक्त भी ये जुमला कारामद है। बिल को जापानी में कहते हैं
1: ओकाइके, ओकाइके।
2: तो बिल की अदायगी के वक्त अमले से कहा जाएगा ओकाई के ओनेगाई शिमास।
0: तो सामीन सुनिए और दोहराइए
1: चेक आउट ओनेगाई शिमास, कॉफी ओनेगाई शिमास, ओकाई के ओनेगाई शिमास।
2: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए, उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें मियां टैक्सी ड्राइवर को अपनी मंजिल के बारे में बताती है।
6: どちらまで
5: 猿の温泉までお願いします。
6: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
5: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
6: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
7: 春さんの知恵袋。
0: अब हारूसान की जंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान की टैक्सियां।
2: जापान की टैक्सियों में किराए की रकम मीटर पर जाहिर होती है, इसलिए ड्राइवर से किराया तय करने की जरूरत नहीं होती और जापान में टिप देने का रिवाज भी नहीं।
0: ये तो बहुत अच्छी मालूमात है। वैसे टैक्सी कहाँ से मिलती है?
2: हवाई अड्डे, स्टेशन, होटल या सियाहती मकामात पर आमतौर पर टैक्सी स्टैंड होता है। शहरी इलाकों में सड़क पर हाथ उठाकर भी टैक्सी रोकी जा सकती है और मुसाफिर को टैक्सी का दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं। टैक्सी का पिछला दरवाजा ड्राइवर खोलता और बंद करता है।
0: अच्छा, तो टैक्सी खाली होने का कैसे पता चलता है?
2: टैक्सी खाली होने की सूरत में उसके डैशबोर्ड पर लगे हुए डिस्प्ले में बाहर से कांजी हरूफ में कूशा लिखा हुआ नजर आता है, जिसका मतलब है टैक्सी खाली होना।
0: ये कांजी हरूफ पहले से याद कर लिए जाएं तो टैक्सी लेने में काफी आसानी होगी ना?